अच्छा वाहेगुरु जी की फतेह। हेल हेल गुरु रामदास एंड हील द वर्ल्ड। हेल हेल गुरु रामदास एंड हील द वर्ल्ड। हेल हेल गुरु रामदास एंड हील द वर्ल्ड। पीस टू ऑल, लाइफ टू ऑल, लव टू ऑल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

सर्व एक ओंकार सतनाम कर्तापुर निर्भो निर्भय अकाल मुट अजुनी सेवं गुरु प्रसाद चप आज सच युगात सच है भी सच नानक हो सी भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लग पर चुपे चुप न हो वही जे लाए रहा लिपतार भुख्या भुख न उतरी जे वन पुरी अपार सहस्या न पलक होए तैक न चले नल किव सचियारा होइए किव गोरे तुते पल हुकम रजाई छरना नानक लिखिया नल हुकमि होवै नकार हुकम न कहया जाय हुकमि हो बंजी हुकम ले वरियाई हुकमि उत्तम नीच हुकमे दुख सुख पाए एक न हुकमि बख्शीश हुकमे सदा बवाए हुकमे अंदर सब को बाहर हुकम न कोय नानक हुकमे चे बुझे ता होवे कहे न कोय गावे को तान होवे किस तान गावे को ता चने निशान गावे को गुण वरियाई अचार गावे को विख्या विकम विचार गावे को सस्तरे तंके गावे को जीले फिर दे गावे को जापे दी से दूर गावे को वह हा रहा दूर कथन कथिन आवे तोत कत कत कति कोति कोत कोत तेदा दे ले दे तत पाए जुगा जुगंतर काय काय हुकमे हुकम छलाए राव नानक वे से वे परवाओ सच साहेब सच नाय बाकिया भाव अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फिर के आगे रखिए जिद्दी से दरबार मौके बोलन बोलिए जिस सुंदरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वरियाई विचार कर्मी आवे कपरा नदरी मुख द्वार नानक है वे जानिए सद आपे सचियार तपे न जाए कि तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे भी अतिम पाया मान नानक गावे गुण निदान गावे सुनि मरवा क्या बाव दुपर हर सुखा ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख वे रसमाय गुरीश्वर गुर गौर परमा गुर कृपा की माय जय हो जाना आका नाही कहना कतना जाए गुरे के दे बुझाए सब न जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए तीर्थ न बजे दस पावा विम्बा ने के नाय करी जेती सिद्ध पाई वे कविं के में मिल ले मातविच करंज मर महान जय गुर की एक सुनी गुरे के दे बुझाए सब न जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए जे छुक चारे आर जा होर न सुनी होए नव खंद विच चनिए नव सले सब कोय चंग नाव रकाए के जस करे जगले जे जिस नरन आवे ता पर न पूछे के कीता अंदर कीता का दोषी दोष त्रे नानक ने गुंग गुंग करे गुन बंतिया गुंदे तेहा कोय न सुजे जे तिस कुन कोय करे सुनिए सिर पर सुनात सुनिए तरथ लकास सुनिए दीपलो पाताल सुनिए तो न सके काल नानक भगत सदा विगास सुनिए दुपाप का नाथ सुनिए ईश्वर वर्मा इंद सुनिए मोत सलामंद सुनिए जो जुगा तन वेद सुनिए शत सिमृत वेद नानक भगत सदा विगास सुनिए दुपाप का नाथ सुनिए सत संतो ज्ञान सुनिए असत का इश्नान सुनिए पर पावे मन सुनिए लगे सहेश दियान नानक भगत सदा विगास सुनिए दुपाप का नाथ सुनिए सरगना के गा सुनिए शिपी पतिशाओ सुनिए अंदर पावे राव सुनिए हाथों वे असकाओ नानक भगत सदा विगास सुनिए दुपाप का नाथ माने की कैद कहे न जाए जे को कहे कछे पछताए राकर काम न ले कनहार माने कव करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए माने सुर तो वे मंबुत माने सगवन राखी सुत माने मोचंता न काए माने जम के सद न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने माग तक न पाए मने पत्य पर गजाए मने मगन चले पंथ मने तरम सती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मंगोए मने पावे मोक द्वार मने परवारे सदार
मने तरे तरे गुरु सिख मने नानक हवे नाविक ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोए पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे तिर के मन पंचे सोए तारा जान पंचे का गुर एक ध्यान जे को कहे कहे विचार करते के करने ना समर दोल धर्म क्या कपूत संतोख धर्म क्या किसुत जे को बुझे होवे सचियार तले ऊपर के तवर तरती होर तरे होर तिस्ते वर करे कमजोर जी जरम का किनाब सवन लिखिया बुरी कलम ए ओ लिख लिख जाने को ए लेखा लिखिया केता होए कितने तन स्यारियो रूप कितने तने कुंकुट किता पसाओ ए को कुवाओ तिस्ते होए लखतरियाओ कुरित कवन कहा विचार परिन जावा एक वार जो तु पावे सै बलिकार तू सदा सलाम निरंकार असंख जाप असंख बाव असंख पूछा असंख तपताओ असंख कुरिया मुवेद पथ असंख चौक मुराय उदास असंख पक गुंगियान विचार असंख सत्य असंख ततार असंख सुर मुवाक्सार असंख मूल लिवलाय तार कुरित कवन कहा विचार परिन चावा एक वर जो तु पावे सै बलिकार तू सदा सलम निरंकार असंख मूर राम कोर असंख जोर हरा मकोर असंख मर क जाय जोर असंख अल्ब हत्या कमाय असंख पापी पप कर जाय असंख कुरियर कुरे फिराय असंख मलेच मलबा काय असंख दिन दिखर वर नानक नीच कहे विचार परिन जावा एक वर जो तु पावे सै बलिकार तू सदा सलम निरंकार असंख नाव असंख ताव गम गम संकलो असंख रे सिर भर होय अखरी नाम अखरी सला अखरी ग्यांगी कुंगा अखरे लकम्बो लंबन अखरे सन संजो बेकन जिन लेके ते सेनाए जे फुरमाए ते ते पाए जे ता कीता ते तनाओ विन्ना विन्ना एक उताओ कुरित कवन कहा विचार परिन चावा एक वार जो तु पावे सै बलिकार तू सदा सलम निरंकार पर ये हाथ तरे तंदे पानी तू ते हु तेसके मूत फलीती कपरा होए देसा बुन लाए ओ दोए पर ये मा पप्पा के संग ओ तो पेनावे के रंग पुनी पपिया करनाए कर कर करना लिखने जाओ आपे पीछा पे विकाओ नानक हुकमिया बो जाओ तिर त्या दतान जे को पावे तिर के मन सुनिए मन मकी तबाओ अंतर्गत तिर मनाओ सगुन तेरे मनाए कोय विंगुन की ते भगना होय स्व सद पनी वरमाओ सत सुन सदा मनचाओ कवन सुबेला वत कवन कवन जित कवन वर कवन सिरुति माओ कवन जितो अकर विन्न पाया पंत जी होवे लेख पुराण भगन पायो का दिया जन लिखन लेख कुरान तिथे वर न जोगी जाने रूप माओ न कोय जा करता सिद्धि को साजे आपे जाने सोए किव खरा का किव सलाई किव वनी किव जाना नानका को सकुआ के एक लेख्याना बदसाई बदिनाई किता जाका होवे नानक जे को आपो जाने आके जान सोए पताला पताला का सगास और कोर के बल तके एक हने के बाद सहस तार कहाँ कते व असुं का एक दात लेखा हो तले किए लेके हो विनाश नानक बदा आखिए आपे जाने आप सलाए सलाए तिसे न पाया नजरिया वे पावे समल न जानिए समल स सुल्तान केरी सती मलदान केरी तू न हो बनी जितिस मनो न विसरे अंत न सिफती के न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वे कैसियो न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे की ताकार अंत न जापे पारावर अंकर अंक ते वल्लाए ताके अंत न पाए जाए एव अंत न जाने कोय बहुत कहे बहुत होए
Badasaeb uchatao ucheu peruchanao Ebre ucheho vekoe tisucheko janesoe Jever aptane apap nanak nadrikar midat Bohuta karamikya na jaye badadata tinatamai Kete mange jotapar kete akannai vichar Kete kapute vekar kete lele mukarpai Kete mure kai kai, kete adu puk sanmar, evida tri datar, banna klasi pane hoi, ho rakna sake koi, jeko kahe akan pai, ho jane jitya mui kai, ape jane ape te, ake seve ke ike, jisno vakshya safat sala, nanak pachai patishao, amu.

0: सिद्ध आके केते किते बुद्ध आके दारम के देव आके सरम जनसेव केते आके अखन पाए केते कर करु तु जाए केते किते होर करे ताक न सके के इके जेवत भावे तिरत होए नानक जन सच सोए जे को आके बोल बितार तले क्या सुर गवार गवार सोदर के हा सोगर के हा चित सरत समाले वाजे नारन के शंकर केते गावन हारे केते राज परिस्यो कायं केते गावन हारे गावे तू नो पन पनी वे संतर गावे राज धर्म द्वारे गावे चिक पर लिख जाना लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सबारे गावे इतिदा संवेदे देवतिया दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सद विचारे गावे जति सती संतोकी गावे वीर करारे गावन फरन फरन राखी स जू जू वेदा नाले गावे मोहन यमन मोहन सूरम अच प्याले गवरतानु पारी तेरे असत्य रत्नाले गावे जोद महावंसूरा गावे कर विचारे गावे कदमल दर बंदा कर कर के तारे से तुनु गावे जोत पावन रेते तेरे बखर साले और के ते गावन से में छिद न आवन नानक या विचारे सोए सोए सदा साहेब सच सच नाई हे भी होसी जाए रजासी रचन चिन रजाए रंगी रंगी वती कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर वे के किता अपना जीव जिसकी बरियाए ज्योतिष पावे सोई कर सी हुक्म न कर जाए सोपति साव सहापति साहेब नानक रह रजाए मुन्ना संतोख सरम पचोली दियांकी करी विभूत किंता काल क्वारी काया जुगदंता परतीत आई पंति सकल जमति मंज जगजीत आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोबेस भुगत किया गया भंडार कर कर वाजे नाद आप नानति सब जाके रिसवर सत संजोग विजोग दुखा छलावे लेके आवे बाग आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोबेस एक माए जुगत व्याए तीन चले परवन एक संसारी एक बंदारी एक लहे दीवन जिव जिस भावे तवे छलावे जिव होवे फुरमन ओवे के ओ न नदर नावे बहुतय ओविदन आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोबेस आसन लोए लोए बंदार जोत पावे सोए कबर कर कर वे के सिर जनहार नानक सच्चे की सच्ची कर आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोबेस एक दूजी व लख होवे लाख होवे लख बीस लख लखेरा आखिए एक नन जगदीश इर पपरिया छुरिया होई किस सुंगला कश की किता आये रिस नानक नदरी पाइये कुरे कुरे तीस आकन जोर चुपे न जोर जो न मंगा दे न जोर जो न जीवन मन न जोर जो न राश मन मन सोर जो न सुति क्या विचार जो न जुगत जते संसार जिस जोर कर वे के सोए नानक उत्तम निश न कोय राति रुति तिथि वार पवन फनिया करी पताल तिस विश धरती रति धरम साल तिस विश जुग के रंग तिंके नानन के नंद कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा अब सच्चा दरबार तिते सोहन पंच परवन नयन करम पवे निशन कछ पखाए ओते पाए नानक या जपे जाए धरम कन का ए ओ धरम ज्ञान कन का आको करम केते पवन पनि वे संतर केते कन महेश केते वर में करे करे रूप करम प्रवेश केते करम पुवे में केते केते तू उपदेश केते ईशा सुर केते केते मंडल देश केते सीत पद न केते केते देवी वेश केते दे परम सुन केते केते रत समन केते अपानी केते अपानी केते
1: surti seva kete nanak antana ant gyan kan me gyan parchan tite nad binod karanan
0: charam kan kiva nijur
1: tite kar kariya bahutanu
0: takya gala katya nuchai
1: jayko kah piche pichitai
0: tite gariya sara mandur
1: tite gariya sara sara kisad
0: karam kan kiva nijur
1: tite hor na kohi hor
0: Tite jod mahabansur.
1: Tin me ram raha barpur.
0: Tite sito sita me mamai.
1: Take rup na kat na jai.
0: Nao marana take jai.
1: Jin ke ram vasa man mai.
0: Tite vagal vasa ke lo.
1: Kara anan sa jaman sui.
0: Saj kan na se minkar.
1: Kar kar veke narana hal.
0: Tite kan maldar varvana.
1: Jeko kate ta antra ant.
0: Tite lo lo akar.
1: Jiv jivakam tibhe tivkar.
0: Jiviga se kar vichar.
1: Nanak katna kar asar.
0: Jat pahara dira suniyar.
1: Aherna ma ved hatiyar.
0: Bhokala kantaptao.
1: Banda bao amrit titao.
0: Dariya shavasak sitakstar.
1: Jin kao narar karam tinkar.
0: Nanak nadri nadranahan.
1: Shlok.
0: Pavana Guru Pani Pata Mata Dharata Mahata
1: Tivisra Duitaya Daya Kale Sagala Jagat
0: Changiaya Buriaya Bhaje Dharma Dur
1: Karmi Apo Apni Kenare Ke Dura
0: Jini Nam Diaya Ke Mishakat Gal
1: Nanak Te Muku Ujle Ike Tichuti Nam
0: Jini nam diaya
1: ke mashakt gal Nanak te muk ujle ke ti chuti nala Vaigir ji ka kalsa Vaigir ji ki fate Sorry, I was late.
2: So when you think you're sometimes
1: Sometimes?
2: Yeah.
1: I don't know. It just might be something about the wireless connection. I asked Hari Munder, he said, maybe it's something with my phone, I don't know. But, you know, it's been working. If it doesn't work, I'll switch over to it.
2: Yeah. I put there's two Mata Munder CDs. The Khalsa, the Sadhana Rock, and the other one you put on Nesta.
1: So you have that one in there?
2: So, yeah, I put it, it's not in there, but it's out there.
1: Okay. Well, I'll try the Bluetooth, and then if it doesn't work, I'll...